0: जे इन्ने साल पहले कह देंदे ते मैं बार बार तरका ही क्यों कर दी, मैं बार बार ये सवाल पुछदी क्यों। ते महात्मा ने साध संगत जी बड़े वजद विच आके आख्या, कहन लगे धीए मैं डरदा सां, अज हो सो नाओ समुंदर में है, क्या जाना नहीं की हो जाना है। जरूरी नहीं जेड़ी बेड़ी है विचकार जाके डुबे किनारे दे कोल, जरूरी नहीं मनुख दा ही टेढ़े पासे जावे मैला हो जावे। ये जेड़ा मन ऐसा है, मैं डरदा सा के जदों तक संसार समुंदर दे अंदर ये बेड़ी शरीर बनया होया है किधरे विषय वासना दे विच दे जल विच डुब ना जावे। पर अज मेरी उमरा पूरी हो गई है, अज मैं अपनी इस दाड़ी नू बेदाग ला करके मेरे परमेश्वर मेरे वाहिगुरु जी दे सन्मुख चले है, बेदाग दाड़ी ला करके चलिया। इस करके क्या तीए अज मेरी दाड़ी चंगी है तेरे कुत्ते दी पूछ ना लो। ते साध संगत जी जदों महात्मा जी ने तीए कह के वेसवा नू बुलाया ना, हिरदा पसीज गया। ते सवेले मन दे अंदर इना सादे जे बोला ने इना असर कीता, मानो प्रेम दे बाणा ने हिरदा विन दिता होवे। अखां दे विचों अपने आप जल वहन लगा, महात्मा दे चरण फड़ लए। कहन लगी, महात्मा जी अज तक जिन्ने भी पुरख मेरे दर ते आए सबना ने मेरे नाल मंद कर्म कीते ते मंद दृष्टि दे नाल तकिया, अज तक किसे ने मैनू धी नहीं किया। ते मेरे मंद कर्मां नू जानदिया होया, मेरे कौड़े बोलां नू सहारदिया होया, आप जी ने मैनू इन्ना सन्मान दिता, मैनू धी दा दर्जा दिता, मैनू धी कह के बुलाया। साध संगत जी बिरथा ना साध मिलाप, साधु दे कोल चल के आउण दा दर्शना दा महात्म फिर ये प्राप्त होया, मन विच वैराग दशा प्राप्त हुई है। रो रो के महात्मा दे चरण धो दिते ने, ते इस वेले अपने मंद कर्मां तों गिलानी आउण लगी, ते मंद कर्म छड के साध संगत जी वाहिगुरु जी दी बंदगी करन वाली हो गई। इस प्रकार महात्मा जना ने उसके सवाल का जवाब दिता, संस्या की निवृत्ति की, सन्मान दिता मिठे बोल बोल के धी कह करके। साध संगत जी वैराग दशा वाली होकर के प्रेमा भगती कर लगी, ते मंद कर्म सदा सदा वास्ते त्याग दिते। इस प्रकार जेडे वड्डे वड्डे पतत ने ना, ये साधु जना की संगत करके पुनीत हो जाते ने। साध संगत जी दत्तात्रेय महात्मा जी होए ने, जिन्हां ने 24 गुरु धारण किते ते गुरु धारण करके प्रसिद्ध ने। एक वेले किधरे शहर दे वल आए ने, ते शहर दे वल जिथे वेसवा दा टिकाणा सी, वेसवा दा चुबारा सी, वेसवा सामने खड़ी है, ते दत्तात्रेय जी दी नजर जिहड़ी है ओ वेसवा ते पै गई। वेसवा दे वल वेख करके मन दे विच विचार कर लगे, मेरिया मना देख ए वेसवा जिहड़ी मंद कर्मां नू करन वाली है, पर मंद कर्म करना ही उसका कर्म है। अपने कर्म नू करन वास्ते किन्नी तत्पर है, मंद कर्म नू करन वास्ते त्यार बर त्यार खड़ी है। मना लोक तेनू साधु कहिंदे ने, तेनू महात्मा कहिंदे ने, ते जो साधु दा कार्ज बंदगी करनी है ना, तू बंदगी करन वास्ते हर वेले त्यार बर त्यार रहो, ते तत्पर होके बंदगी कर। वेसवा नू वेख करके उस तों वी सिख्या लै लई, ते नमस्कार कर दित्ती वेसवा नू, दूरों ही तेनू वेख के मैनू सिख्या मिली, तू भी मेरी गुरु ही है। 24 गुरुआं दे विचों एक गुरु दत्तात्रेय जी ने वेसवा नू धारण कीता। बिरथा ना साध मिलाप, हुण पूर्ण साधु दी महात्मा दी दत्तात्रेय दी नजर पई है ना, जदों उस वल बार बार देख रहे ने कि मंद कर्मन अपने मंद कर्मां नू करन वास्ते त्यार बर त्यार है, बार बार दृष्टि पैंदी है, ते दृष्टि पैण दे नाल नजर पैण दे नाल वेसवा दा जीवन बदल गया। अपने मंद कर्मां तों गिलानी आई, लोक धर्म दी किरत करदे ने, नाम जपदे ने, अमृत वेले उठदे ने, साधुआं दी सेवा करदे ने, जन्म सफला करदे ने, ते वेसवा मन विच विचारदी है, मेरिया मना तू किहड़े पासे लग्गिया होया है, मंद कर्मां नू छड के जे बंदगी कर लवे ना, जिन्नी सुहिरदता दे नाल, जिन्नी चाहत दे नाल, जिन्नी सिख दे नाल, जिन्नी तैयारी दे नाल मंद कर्मा वास्ते त्यार बर त्यार है, जे इन्नी तैयारी दे नाल बंदगी विच लग जावे ते तेरा भला हो जावे। साधु दी दत्तात्रेय दी नजर पैण दे नाल ही भला हो गया, साध संगत जी बिरती बदल गई, ते वेसवा तो धर्मात्मा बन गई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी वचन करदे ने, जो जो संग मिले साधु कै, जेड़े जेड़े भी साधु जना दी संगत विच मिलदे ने, जिन्हां नू साधु दा दीदार हो जांदा है, ते पतत पुनीता, ओहो प्राणी पतता तो महापापिया तो पुनीत पवित्र हो जांदे हन जीओ।
1: आहो नानक जाके वड भागा।
0: गरीब निवाज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव।

0: साहिब सच्चे पातशाह जी हजूर वचन करदे ने भाई जिन्हां दे वड्डे भाग तुर दरगाह तो परमेश्वर जी ने मस्तक दे उपर लिख के पाए हन
1: जन्म पदार्थ जीता
0: उन्हां ने साधु जना दी संगत करके महात्मा दी संगत करके जपया है सतनाम
1: श्री
0: वाहिगुरु अपने जन्म पदार्थ नूं उन्हां ने जित लिया संसार रूपी जुए खाने दे विच आ करके उन्हां ने विकारां दी खेड नहीं खेडी वाहिगुरु जी दी बंदगी दी प्यार वाली खेड खेडी ए ते जन्म पदार्थ नूं उन्हां ने जित लिया है जीओ
1: तारक महला पंजवा
0: सतगुरु देव पिता श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी हजूर सारंग राग दे अंदर उपदेश दी बख्शिश करदे हन जीओ
1: ठाकुर बिनती करन जन आयो
0: हे महाराज सच्चे पातशाह जी वाहिगुरु जी दी सानू बख्शिश किवें प्राप्त होवे महाराज असी सुख दे सहत आनंद दे सहत हो जाइए महाराज नाम दे सरवण करन वाले प्रेमी हो जाइए ए दात सानू किवें प्राप्त होवे गुरदेव पिता जी फरमाउंदे ने भाई अरदास करदे रिहा करो परमेश्वर जी दे सन्मुख शरण विच पै के अरदासा बेनतियां करदे रहना ठाकुर हे सृष्टि दे करता भरता हरता परमेश्वर जी आप जी दे दर ते जन हो करके मैं बेनती करन वास्ते आया हाँ ते महाराज मेरी आप जिया दे दर ते यह अरदास है तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मह सुख घनेरे महाराज आप जिया दे दर ते यह अरदास।

रंग के तिरंगा दिल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दिल बदल के दि

पंच बार की तरफ पुकार पर सीता
परम प्रज्ञा प्रकाशी अशेदंग छे आद अद्वय अविनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो

देह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औखदि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बाणी कहूँ जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सातकी तामसी हों कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हों कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या धरे मानवी हों कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ट की ऋष पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अत्र सारंग कहूँ मद्र रूपं कहूँ मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध सेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्धावस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरवी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देव

पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूँ वीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेझ व्याख्या कहूँ बेदरीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रवाहो कहूँ छल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजं।

शोभ नहीं रंग रेख जह जन्म जात नहीं भरम भेख। जह करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जह नाम थाम नहीं बर्ग ब्याद जह रोग शोक नहीं सत्र साध जह त्रास वास नहीं देह नास जह आद अंत नहीं रूप रास जह रोग शोक नहीं जोग जुगत जह त्रास आस नहीं भूम भुगत जह काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय भंग जह नेत नेत उचरंत वेद जह अलख रूप कथत कतेब जह अलख रूप आसन अडोल जह अमित तेज अक्षय अतुल जह ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन शीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जो

चार कहूँ करत जच गंधर बिघान कहूँ धूप देव कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्म देश देश उदास कई जन निवास कई जगन ताप कई जपत।

देह राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जेह जात न पात न मात वितंग जेह रचयं छत्री छत्र छितंग जेह राग न रेख न रोग मणं जेह द्वैख न दाग न दोख गणं जेह अंड ते ब्रह्मंड रचयो तस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रे सिंध रूपिंद नगिंद नगं श्रे जच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नर पाल रिपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंग किये देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतं प्रभ जात न पात न ज्योत चुतंग जेह तात न मात न भ्रात सुतंग जेह रोग न शोक न भोग भुवंग जेह जम्पह किन्नर जाच जुवंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पाद गणं भवभूत भवेख भवान तुवंग जेहे अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पौन प्रचंड बली वन जास कियो फल।

समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानी है, सदीव सिद्ध शुद्ध दा।

आत्मात जात है न पात चेहन वर्ण है अदेख सेख फेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्वभरण है जिमी जमान के बिखे सदीव करम भरम है अद्वेख है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठौर में विशेख अन मानिय न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण और कुरान नेत नेत के बतावई न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए अगंज आद देव है कहो सो कैसे पाइये जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन और मकान अप्रमाण

न मान है न मौत है न साख है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साहु है न साह को कुमार है न नेह है न गे है न देह को बनाओ है न चल है न छिद्र है न चाल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न चल है न छिद्र है न छाय को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न दात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सुख है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दर्द है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न

न कर्म है न परम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है। न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है। न काम है न क्रोध।

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जपसदा अगस्त आद जेवडे तपस्तपि विशेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ वेखिय अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र सत्र सनेह जानिए सदीव सर्व लोग के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोद है।

आद नाद गाद पुरख सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीट विखे फसे सब ठौर मैं निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर विखे रमयो जे चक्र चिहन न चित्र आद देव उदार मूरत अगाध नाथ अनंत आद अंत न जानिए अभिखाद देव दुरंत देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेव सनक औसन केस नंदन पाव ही ना सेव जाच किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत पुकार ही शिव सकर ओ मुख चार सर्व सबद बतार के

तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के नाधीन सर्व सबद पतार के तर जानिए जह जोत शेष नाम सहंस वर्ण है नेत पूरण होत सोध सोध हटे सफ़ सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पढ़त पढ़त सके महा

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देवा खंड भूमा का जलेथले मह जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र ओमुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भेव मुख चार आद अंत न मध्य जाको भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीया कल युग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोत सोत थके महासुर पायो नहे पार त्वा प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहां श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जी तब कह मरण है।

कहो सुसम का सो कह दम को कहा कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा कहा रंग राजा कवन हरक शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत मह तवन दोहरा कवन दृष्ट को पुष्ट है कहा दृष्ट को विचार कवन दृष्ट को भ्रष्ट है।

दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन दोष निकंदन आदि वृते चरासुर मारण पत दोधारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन रंभक पर्दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्टि।

जा फरंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत जमके भूखंड तमके अध सिद्ध जमके फुंक फनंग जय जय होशी मै खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग। चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खंडया खंडन खून खिते दामनी दमंगण सुजा फरंकण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवर कण दुष्ट प्रकर खण दुष्ट प्रहार खण दुष्ट मथे जय जय होशी मै खासुर मर्दन भौम का सतलूर्ध अधे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन हृदय नराचन धरम वृते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय होशी मै खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोघ निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उपारण शोध मते फणि अर्भुंकारण बाघ बकारण सहस्र प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अर्ष प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय होशी मै खासुर मर्दन भूमाकाश पताल जलंग। चाचर जमकारन छिछुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ी वृतंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय होशी मै खासुर मर्दन वरम विनाशन धर्म धुजे घुंगुरु घमंगण शस्त्र झमंगण फणि अर्भुंकारण धर्म धुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथाहे एक वृते जय जय होशी मै खासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर्मन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन।

संकटे निवारण धम उधारण तेज प्रकर खंड धुंध तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आध रात गाद अच्छे सुधता समर्पण तर्क वितर्कण त्रपद प्रतापण जपत जीवे जय जय होशी सहस्र प्रकर खण आद नील गाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिछ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंगे के हर लंगे आद अदंगे क्रूर कथे जय जय होशी रक्ता सुर खंडन संभ चक्रत निसुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी ब्रहासे सुख सरणा से सुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रहंगी वेद प्रसंगी तेज तुर

खतरियान खतंगी अभंगी आदि अनंगी अगाध गते ब्रिडलाज विहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आदि वृते सुर नर प्रतिपाल पति दो

वी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट वृथर खंड पितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गुड़ गते जय जय हो सी मैं खास मर्दन आद अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मैं खास मर्दन साध प्रदर्शन दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहीली ज्योत जतीली तुंद मते अष्टायद।

असुर मारण नरक निवारण पद दो धारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पद दो धारे मुंड मथे जय जय हो से मैं खासुर मर्दन धूम्र विधुंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन बिडाल बजे सरदार विवरखण दुर्जन धरखण अतुल अमरखण धर्म धुजे धूमराज विधुंसन श्रोणत।

तुम कहो देव सर्वं विचार जिम कियो आव करते बसार जद्दा बभूतन भय आनंद तो कहो जथा बत त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल याद वह भूत अनभय दयाल दाता दुरंत दुख दुख रहत जह नेत नेत सब वेद कहत कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए ब्रह एक रूप द्वय कै लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय अनाथ सब रोग शोक ते रहत रूप अनभय अकाल अच्छय स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जह जात पात नहीं भेद भरम जह रंग रूप नहीं एक धर्म जह शत्रु मित्र दू एक सार अच्छय स्वरूप अब चल पार जानी न जाए जह रूप रेख कहे बास दास कहे कौन फेक कहे नाम दास है कौन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चयन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत के करत पाल उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग जय अंशिज तेज अनभिज दाग जल थल महीप बंतन दुरंत जेह नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जेह पैर पार दीनान दोख तहता उदार कई कोट इंद्र जेह पान हार कई कोट रुद्र चुकिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मानंद जेह नेत नेत निस दिन उचरंत त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल कर नित संत उबार गनी मन गारे पच्छ पशु नग नाग नरा देव सर्व समय सबको प्रतपार फोखत है जल मै थल मै पल मै गल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दुखन देखत है पर देत न हार दाहत है दुख दुखन को दल दुजन के बल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पदमावत भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज रोग रुहान की रोज नटार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे हंगेव न फेव लखियो भ्रम स्यो भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह पीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगेह अच्छ है। जान को दे दे अजान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है। काहे को डोलत है तुम रे सुत सुंदर श्री।

राखत है अपनो कर दे कर पाप सम्भूहन बेटन पावे। और की बात कह कहे तू सौ सो पेट ही के बट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर द्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहू को नेत ही नेत वेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानन से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद कतेव न भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो देह को मन मै जह को मितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अत भेद निर्पाण सब पचहारे। भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोख न संग तिहारे। आद अनाद अगाद अभेगाद वेख जप्यो दिन ही कुल तारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरयो कर भेष तपोधन केश धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे। दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छेत छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमाल ध्यावे। गोर गर तेज गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना के तेग बांधे। आरूप के अरबी आराध्य तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कूरे सी जाने। पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेले तेरी मान सो तपस्या करे। दृढ़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहेले माग देश के मंगेले बीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे जिन मचीन के शीस न्यावे। तिब्बत ध्याय दुख देह के दलत है। जिन्हें दोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो। सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साधा दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे पहुंचत ताहि चिट्ठी की जिंघार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार कते ब्रह्मा मुख चार कते कृष्णा अवतार कते राम कहियत है। केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन कते व्यास प्रवीण कते कुमेर कुलीन कते जश कहियत है। करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताहि ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पार वार पाइये न पार व अपार के बखानिये। अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानिए। जंद्र हूँ न जात जा के बाप हूँ न माय ताकि पूर्ण प्रभा की सो छटा के अनुमानिए। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है के निजंत्र के जानिए। तेज हूँ को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है। विरक्तता के बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ के रूप है को मत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को गारक है। साधन को रचक है गुणन को बहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को गुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है। गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को बोकत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है। अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है। जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है। महीपन को मंड है के स्त्री है न नर है।
विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पार वार हूं को पार जाको की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हबसी हल विध्यावे पूर्व बिना बार पावे असत अनास है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेवनाद अद्वय अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया द्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के हंसनी सिसी हारो मही रसी हुसनाबाद गंगा के सिधार चली सातो सिंध रूल के पारसी बलाऊगढ़ रूपा के सी रामपुर सोरसी सुरंगाबाद नीके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदगढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ कांसी बोरसी ससी सुरंगाबाद नीके सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है गंगा साम गंगधार बकान सी बिलंदवाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासीस के दुरंगी मकरान के प्रतंगी तेरे गीत गायत है भकरी गंधारी गोर गखरी गिरदे जचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरन पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं विराजे

धरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहाउ जन पिता लोक सुत बंता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड आवे सैको सा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया।

आच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट

तरन कौ आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारिय चुन चुन सत्र हमारी मारिय आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास नवरिय हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अजुजो करी और अच्छा राख ले हो मोह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा पप धरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा

रच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट भव संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तुत पाता सकल मलेच्छ करो रण घाता जे अस ध्वज तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम

संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिए है ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध घर मु सब होई दुष्ट छा छुए सके न कोई।

ते लेह उपचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता केलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छाय करता श्री अदुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन भाषत फल पावे सोई दुख नाथ साहेब आप

समापत मस्त शुभ मस्त अफजू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दय राख मोय मन क्रम बचन विचार चौपई मन अग्न स प्रथम मनाऊ किशन बिशन कब हूँ नह ध्याऊ कान सुन पहचान न तुन सो लिव लागी मोरी पग इंसो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किं कर थारो अपना जान करो रखवार बाह गए की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे।

करो। जब आओ कि औध निदान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरों दोहरा। दसम कथा भागवत की भाखा करीब नाय अवर बास नाना प्रभ धर्म युद्ध के।

तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री अस पान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तोहे।

0: सुकमृत रमना
1: भगत जना के मन विश्राम राव
0: प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे
1: प्रभु के सिमरन दुग्गम नसे
0: प्रभु के सिमरन काल पर हरे
1: प्रभु के सिमरन दुष्मन डरे
0: प्रभु सिमरत कज बिघन न लागे
1: प्रभु के सिमरन हम निज जागे
0: प्रभु के सिमरन भवन व्यापे
1: प्रभु के सिमरन दुख न संतापे
0: प्रभु का सिमरन साध के संग
1: सर्व निदान नानक कर रंग
0: प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध
1: प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तक बुद्ध
0: प्रभु के सिमरन जप तप पूजा
1: प्रभु के सिमरन बिन से दूजा
0: प्रभु के सिमरन त्रिदृष्टि नानी
1: प्रभु

0: सिमरन कर भगत प्रगटाए,
1: हर सिमरन लग वेद उपाए,
0: हर सिमरन बैस जति दाते,
1: हर सिमरन नीचो कुन जाते,
0: हर सिमरन दारी सब धरना,
1: सिमर सिमर हर कारण करना,
0: हर सिमरन कियो सकल कारा।

0: सात के संग मुख पूजल हो,
1: सात संग सगली को,
0: सात के संग मिटे अभिमान,
1: सात के संग रखे सुज्ञान,
0: सात के संग बुझे प्रभु नेरा,
1: सात के संग हो निबेरा,
0: सात के संग पाए नाम रतन,
1: सात के संग एक ऊपर जतन,
0: सात की महिमा बरने कौन प्राणी,
1: नानक सात की शोभा ब्रह्मा समाने,
0: सात के संग गोचर मिले,
1: सात के संग सदा पर फूले,
0: सात के संग आवे बस पंच,
1: सात संग अमृत रस पुंजा,
0: सात संग होए सबकी रहे,
1: सात संग मनोहर बैन,
0: संग न कतु धावे,

0: तारे
1: साधु के संग सोधन पावे
0: जिनते सब को बरसावे
1: संग धर्म राय करे से
0: साथ के संग वासुर देवा
1: के संग पाप पलाय
0: साथ संग अमृत गुण गाए
1: साथ के संग सर्व दान गाए
0: नारायण साथ के संग सफल जनम
1: साथ के संग नई कज गाए
0: दर्शन बेटे तो निहाल
1: के संग कलूत कर थरे
0: साथ के संग मेरे पर हरे
1: के संग या हुआ सुए
0: साथ संग विश्वकर मेला
1: इच्छे सोई पल पावे
0: साथ के संग बिरता जावे
1: ब्रह्म साधृत बसे
0: नानक।

सरकार दुखी हो जड़ पाइए जो सास बिना दुर्गत की लोता आपन बीजा पे ही खाए।

0: कीर्तन केवल बखिया
1: रस में सोए निर्वाण
0: एक ऊपर जी जन की आस
1: तिसकी कटिए जम की पासा
0: हर ब्रह्म की जित मन पू
1: नानक से न लागे दुख
0: हर प्रभु मन चेता।

0: देखो तब सब किज मूल।
1: नानक सो सुकम सोई अस्तूल,
0: ना कि जन्मे ना किज मरे,
1: आपन चलित आप ही करे।
0: आमा जामा दृष्टन दृष्ट,
2: आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ,
0: आपे आप सगल में आप,
1: अनेक जुगत रस पाप उताप,
0: नासी नाही किज काम,
2: धारण धार रहो ब्रह्मांड,
0: लख पे हो पुरख परता।

0: सर्वन गान जाके दृष्टि माहे
1: के कलना
0: सब कुछ तिसका हो करने जो
1: बिंदु सर हुआ न हो
0: जब जन सदा सदा दिन रहने कर कृपा जिसको नाम दिया
1: नानक सो जन निर्मल दिया
0: जाके मन गुर की प्रतीत
1: जनावे हर प्रचीत
0: भगत भगत सुनिए ते लोहे
1: जाके देखो
0: सच करने सजता की रह
1: सच दे सतमो कह
0: सच दृष्ट।

0: सी ब्रह्मन में रा
1: मानो के तू प्रीत्या
0: इसते परे ना ही कुछ को
1: सर्व निरंतर है को सोए गए गंभीर गए सुजाना
0: ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
1: कृपा निदान दयाल भक्षण
0: साथ तेरे की चरणी पाओ
1: नानक के मन हन राओ
0: सा पूरन सरना
1: जो कर पाया सोई हो
0: हरन भरन जाका नेत्र
1: निसका मंत्र जाने हो
0: रूप मंगल सज्जा
1: सर्व तोप सुनिए करता के
0: राज में राज जोग में जोग
1: तप में तभी सक्रस में पोगी
0: ध्याये भक्त सुख पाया
1: नानक तिस प्रके ने अंत न पाया
0: के मत ना
1: सकल देवार है हो गाए
0: का जन्म क्या जाने
2: सकल
1: करो अपने सो
0: समत ज्ञान ध्यान जिन दे
1: गंदास नाम जा वैसे
0: त्रिगुण में जा का ब्रह्म
2: है मरे फिर आवे जाए
0: उच्च नीच इसके स्थान
1: जैसा जमावे तैसा नाना ज्ञान
0: नाना जाके रंग
1: नाना वे करे एक रंग
0: नाना विधि कीनो विस्तार
1: नाना विधि कीनो विस्तार प्रभ विनाशी एक अंकार
0: नाना चलित
1: नाना चलित करे किन माए
0: नाना विद करी मनत मनाई
1: अपने की मता पे पाए
0: इसके सब तिसके
1: जब जब जीवे नाना करना
0: धारे सगले जन
1: नाम के तारे खर ब्रह्मंड
0: के तारे सिमृत वेद पुराण
1: नाम

0: आज सपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सोजन बताए
0: रूप सज्जा का सतस्ता
1: पूरक सत केवल प्रदान
0: सज्जा की बाणी
1: सतपूरक समाज समाणी
0: सतकर्म जा की रचना
1: सतमूल सत सत उत्पत
0: सतकर्ण निर्मल निर्मली
1: जिसे बुझाए तिसे सबले
0: सतनाम प्रभु का सुखदाई
1: विश्वास सत नानक गुरुदेव पाए
0: वचन साधु उपदेश
1: सत्य जन जाके हृदय पर
0: सत्य नृत्य पूजे
1: सत नीरत पूजे जे कोय
0: आप सत किया
1: आप सत किया सब सत जिसके शिष्य करने हार करते बिना जाने किया
0: विस्मन विषम पे विस्मान
1: जिन बुझिया दिशा स्वाद
0: के रंग राज जन रहे
1: गुर के वचन पधारत लहे
0: दुख काटन
1: जाके संत

0: सदे
1: पूजा सस सेवदार नाम सस
0: ध्यावनार
1: आपे गुण आपे गुणकारी
0: सत सत प्रभु वक्ता
2: सत सत जस सुनता
0: पूजन हर को सत सबो
1: नानक सत सत प्रभु सोए
0: स्वरूप हृदय मानिया
1: कर क्रांति मूल बचानिया
0: हृदय विश्वास
1: तद ज्ञान।

0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी,
1: सेवक क्यों मन पर दी
0: ठाकुर के सेवक के निर्मल रीता,
1: सेवक जाने
0: रब का सेवक नाम के रंग, सेवक की राखे निरंकार,
1: सेवक जिस दया प्रभु धारा,
0: नानक सो सेवक साथ साथ समारे, अपने सेवक की सर पर।

0: राखे औरन को
1: तरबिया का राखा सोए
0: आहे सोच कर रे पाणी
1: जब नानक प्रबल खटाणे
0: बारंबार बार प्रभु जपिए
1: पिया अमृत मन तंद्र पिए
0: रतन गिन गुरु मुख पाए
1: इसके चवर नाय दृष्ट आया
0: नाम धन नाम रूप
1: नाम सुख नाम का संग
0: नाम रस योजन तृप्ताणे
1: मत नामे नाम समाने
0: उठत बैठत सोत नाम
1: कहो नानक जन के सत्काम
2: अपने जन के निदात
0: भगत तुम के चाहे
1: अपने सुर समाए
0: हो सो जाने
1: अपने काम हम जाने
0: महिमा कौन बखान
1: इसका गुण कहे न जानो कौ नानक से जन पूरे
0: मेरे दिन की ओट ले
1: मतन अपना दिन जन दे
0: जिन जिन अपना प्रभु पूछा
1: सो जन सरब तो का दाता
0: की शरण सरब सुख पावे

0: बंधन काटे,
1: गोरखा से पिछाड़ दे हाटे,
0: सिक्का नाम तन दे,
1: गोरखा से बड़ पागी है,
0: सिक्का हलत पलत सवार,
1: नानक सतगुरु सिखो जी नाल समारे,
0: सेवक जो रहे।

0: दाता
1: जन जन में पार ब्रह्म
0: एके आपने कछु परम
1: नानक
0: ऐसा पूर्ण भागी पाई है
1: दर्शन पे खत पुनी
2: निर्मल रे
1: संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगा गवे
1: सुनकर वचन करन आकान
0: मन संतों का तम बतियाने
1: गुण अखियो जाका

0: हर सुख दाता
1: ताकि कीमत देने न पाए
0: भगत बंधन नित करे
1: चरण कमाए जय सिमरे
0: बलिहारी सद्गुरु
1: अपना नाम जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने
0: रस पावे जन को
1: उस पुर पीवे अमर सो होए
0: ओ उस पुर का नाही कदे बिना
1: जाके मन पकड़े गुंता
0: साठ पहर हर का नाम ले
1: साचो पदे सेवक को दे
0: मोह माया के

0: मन के मिटे अंधे
1: साधु के पूरन उपदेश से
0: चूका निर्भव हो पसे तिन कृपा तारी
1: पाई
0: चूके प्रम
1: गुण
0: आप सरगुन भी
1: सगली मोहे
0: चरित्र आप बनाए
1: अपने की मत आप पाए
0: हर बिन दूजा नाही
1: को सोए
0: पोत रवे।

0: ठंडा हर नाओ
1: सिमर सिमर सदा सुख पाओ
0: भविन से पूरन होया
1: भगत माया तम परगास
0: सिद्ध कर जाए बसे अबनासी
1: सौ नानक काटे जम फांसी
0: सत विचार कहे जन साचा
2: धर्म मरे सो का चो का चा
0: आवा गवन मिटा प्रभु सेवा
2: जय सन गुरुदेव
0: जन पर होए उद्धार
2: सिमर प्राण धार
0: अनेक उपावना छूटन हारे
1: सिमर सागत वेद विचारे
0: हर की भगत करो मन ला

0: दयाल
1: भगतव चल सदा कृपाल
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व कटा कृत कृतपाल
0: नाथ पुरख कारण करता
1: भगत जना के प्राण धार
0: जो जो जपे सो होए पनीत
1: भगत पाए लावे मन हित
0: निर्गुण यार निज अजान
1: नानक तुमरी शरण पर भगवान
0: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए
1: एक निमा करके गुण गाए
0: अनेक राज भोग बढ़ियाए
1: हर के नाम की कथा मन पाए
0: भोजन का प्रसंगी
1: रसना जपती हर नीत
0: सो करनी सो

0: मर जा।
1: अब जब एक और कृष्ण निष्ठे था तब तारी आपन सुन समान, जब इसका वरण चयन न जापन, जब आपन आप ब्रह्म आपन के ना पड़ती जा।
2: जब हो वक्त केवल धनी
3: गणी,
2: जब एक हर गम पान, जब निर्गुण तब सज सुभा।

0: सुख अपनासन
1: सजन मरण को कहा विनाशन
0: जब पूरण करता प्रभु सोए
1: रघुराम की त्रास हो कि सोए
0: जब अवगत गोचर प्रभु एका
1: चित्र गोपति पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन गोचर
1: अवगत

0: ईसु ईसु मन
1: करत करावन हकम जाने
0: अंतर बसे बार भी हो
1: नानक दर्शन देख समोहे
0: आप सत किया सब साथ
1: इस जब ने सगले उत्पत
0: भावे ता करे विस्तार
1: इस भावे ता एक अंकार
0: कला लखी ना जाए
1: जिस भावे तिस ले मिलाए
0: कमंडक्ट कवन कहिए दूर
1: आपे आपा भरपूर
0: प्रगत

0: लोक साध के
1: अमलिकला ले रतना
0: सुनत कमावत हो तो उधार
1: आप करे लोक निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का सार
1: जाके मन लगा रंगा
0: जय जय शब्द अनाहत वाजे
2: सुनत करे प्रभु का जे
0: रखते कुपाल महा के माते
2: नानक उधरे तिन

0: भगत जना के मन
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: चिट्ठी गौड़ी मेला पंजवा सुनो एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल थल मैयल पूरे स्वामी से जनहार अनेक बात होए बस

परम सम्मान योग गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संग जीओ साहिब कमाल सरबंस दानी धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सतगुरां दे पावन अते पवित्र सतयुगी तप अस्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे रात दे दीवाना विच सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज सतगुरां दा पावन पवित्र शहीदी गुरपुरब जिस दे निमित समूह हजूरी सात संगत तत् खालसा पंथ सेवक जत्था अते गुरु की संगत वल्लों पिछले तीन दिनां तों सतगुरां दे पावन हजूरी विच इस समय ते गुरबाणी दे पाठ शब्द कीर्तन अते गुरमत विचारां चल रहियां हन। आओ आप संगतां दी असीस सदका सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र जीवन बारे विचार करिए। सब तो पहला सतगुरु गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी दी बख्शी होई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी दे जीवन बारे कल ते परसों दो दिन आप जी ने सत्कारयोग ज्ञानी जी उन्हां दे पासों सतगुरां दे जीवन बारे विचार सरवण कीती है। जिवें कल आप जी ने सरवण कीता सी किस तरह गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी ने अपने जीवन दे विच जिहड़ा गुरु अर्जन देव पातशाह जी का समा सी ना महाराज ने एक बार सिखी का बुलंदी ते प्रचार किया है जिस का जिक्र भी गुरबाणी विच है। प्रगट भई सगले युग अंतर गुरु नानक की वडियाई। गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी की शहादत के कारण जिहड़े ने विद्वाना ने लिखे ने जिस वेले सात संगत जी दुनियावी तौर पर जे कोई इंसान बहुत वड्डी तरक्की करे ना सब तो पहला उहदे आपने जिहड़े नेड़े दे ने ना उह उहदे नाल वैर करदे ने। गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी के जीवन दे विच भावें कि गुरबाणी दे विच स्पष्ट शब्दां दे विच इह बचन आए ने कि हे गुरु अर्जन देव साहिब महाराज तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। इथों तक महाराज सच्चे पातशाह जी ने कह दिता बाणी दे विच भट्ट साहिबाना ने कह दिता है कि महाराज तुहाडे विच अते परमात्मा दे विच रत्ती मात्र भी भेद नहीं है। बचपन दे विच जिस वेले आप जी का प्रकाश होया माता जी सत्कारयोग माता भानी जी सतसंगत जी माता भानी जी दे कुखों गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी का जिस वेले अवतार होया ना आप जी दे नाना सतगुरु गुरु अमरदास साहिब महाराज उन्होंने उस बालक दे वल देख के ये बचन कहा सी कि ये भारी पुरख जग मैं प्रगटै है। कहते भारी पुरख संसार दे विच प्रगट हो गया है। गुरु अमरदास पातशाह जी दे बचन सन कि भारी पुरख जग मैं प्रगटै है बाणी को बोहित बड़ वह है। बोहित कहते जहाज नूं जिहड़ा पुरख भाव जिहड़ा ये साहिबजादा साडी सपुत्री दे कुखों जिसने अवतार धारिया ये भारी पुरख होवेगा अते ये बाणी दा बोहित जहाज होवेगा। अज आपां देखदे जिस जहाज दा जिक्र गुरु अमरदास पातशाह जी ने पहला ही भविखत बचन कर दिते सी अज गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी दी देण है जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो सानू प्राप्त होए ने। सतसंगत जी अज दूरों दूरों संगत आउंदियां ने पावन अस्थाना दे दर्शन दीदारे करदे भी ने। दर्शन दीदारे करके गुरु साहिब जी नू जागती जोत जाण के प्रतख सच्चे पातशाह जी दे चरणा विच अरदास करदी है। ये जे वड्डी दात जे सब तो पहली दात जे किसी ने दिती है तो वह गुरु अर्जन देव साहिब महाराज ने दिती है। क्योंकि जिस वेले गुरु अर्जन देव साहिब महाराज समा अपने चाली चलता गया बचपन दे विच गुरु अमरदास पातशाह जी दे समकाल उन्हां दे समय विच 11 साल आप जी ने उन्हां दी गोद दा आनंद माणिया। ते गुरु अमरदास साहिब महाराज ने कदे कहा
कि ये थाल का मालक है, क्योंकि थाल जिस वेले प्रशादा छक रहे सन गुरु अमरदास पातशाह जी, जाके थाल ते हथ पाया, कहिंदे ठहरो ये थाल दे मालक। ये इशारा सी थाल केड़ा सी, जिस दा जिक्र आपां रहिरास साहिब विच पढ़दे हां। थाल विच तीन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पायो, जिसका सबस आधारो। ये गुरु ग्रंथ साहब जी रूपी थाल का जिक्र सी। अते ए भी बचन कहा सी कि ऐ पुरखा, अजे ये जिहड़ी वडियाई है पहला तेरे पिता दे कोल आवेगी, उस तो बाद तुहानू प्राप्त होवेगी। एक बार ये भी बचन कहा सी, कौन पुरख है भारी, जिन मंजी हिलाई सारी। जिस वेले आप जी आराम पै करदे सी, जाके उस मंजे दे ठावे नूं फड़ के हिलाया, ते हिल गया मंजा, ते गुरु अमरदास पातशाह जी सुते पए ने बचन कीता सी, कौन भारी पुरख है जिन्हें साड़ी मंजी हिला दित्ती है। सत्कारयोग बीबी भानी जी कहण लगे, पिता जी दोहे ता जे दोहे ता। ते आप जी ने बचन कीता सी बीबी भानी नूं कि ये भानी पुत्र ये दोहेता नहीं, ये तो बाणी का बोहेता है। इउं सात संगत जी जिस वेले गुरु अंगद दे गुरु अमरदास साहिब महाराज जी दे ज्योति जोत समाउण तो बाद गुरु रामदास पातशाह जी गुरता गद्दी ते विराजमान होए, गुरु रामदास पातशाह जी ने अपना समा सिखी का प्रचार किया, पावन पवित्र सरोवर की अमृत सरोवर की सेवा भी आरंभ की। पर जिस वेले समा नेड़े आया ज्योति जोत समाउण दा, उस वेले परख की अपने वड्डे पुत्र बाबा पृथ्वी चंद नूं कहा कि जाओ लाहौर। उन्होंने जवाब दे दिता कि पिता जी गुरु घर दियां बड़ियां जिम्मेदारियां मेरे ते है, क्योंकि सतसंगत जी कई बारी बंदा सोचदा मेरे तो बगैर सेवा का काम नहीं चलना, मेरे तो बगैर गुरु घर का काम नहीं चलना। गुरु रामदास पातशाह जी कहन लगे, पुत ये गुरु का दर है, जे तू नहीं होवेगा तो कोई होर सेवा कर लवेगा, कोई होर सेवा सामभ लवेगा। फिर बहाना किया गर्मी का, टाल दिता जान तो साफ इनकार कर दिता। दूजे पुत्र बाबा पृथ्वी चंद जी तो बाद बाबा मेहरबान जी नूं कहा, बाबा महादेव जी नूं जिस वेले कहा, उन्होंने भी जवाब दे दिता, कौन रिश्तेदार, केड़ा रिश्तेदार, केड़ा ताया, कौन सियारी मल जी, ना मैं किसी नाल रिश्तेदारी रखनी है ना रखनी चाहुंदा। जिस वेले सब तो छोटे सपुत्र ये परख सी असल विच कि वचन कौन कमावे, गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं जदों कहा ना, गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने हाथ जोड़ के पिता सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी नूं कहा, पिता जी तुसीं मैनूं उत्थे भेज रहे हो जिथे खुशी है, जिथे कौतक है, सिख सिख दा मेल है, गुरसिख एक दूजे नूं मिलणगे, नाम दी चर्चा होवेगी, प्रेम प्यार वधेगा। जे समा पै जावे जिथे जाके मैनूं जान भी देनी पवे, पिता जी आप जी का बचन नहीं मोड़ांगा, बिना सोचिया समझिया मैं उत्थे जाके अपने प्राण दे दवांगा, ये तो खुशी वाली थां है, मैं जरूर जावांगा। बचन कमाया ते माता भानी जी की असीस लैके उस वेले गुरु अर्जन देव साहिब महाराज लाहौर गए। देखो परचा गुरु रामदास पातशाह जी ने कहा, पुत ठीक है जाओ उत्थे जाके सिखी का प्रचार करो, धर्मशाला विच बैठ के सत्संगत करो। अते बचन गया, जदों तक असी ना बुलाईए उदों तक वापस नहीं आना। ये परख सी, ये परचा सी, क्योंकि इधर पृथ्वी चंद गिणतियां विच सन कि गुरु रामदास पातशाह जी दे ज्योति जोत समाउण दा समा नेड़े है, ये ज्योति जोत समा जाणगे ते गुरता गद्दी मैनू मिलेगी, क्योंकि गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपने रहिंदे कुछ साल अपने जिंदगी दे जिहड़े रहिंदे साल सी कुछ समा सी ना, वह गुरता गद्दी दे समेत गुरु रामदास पातशाह जी नूं दे दित्ता सी, क्योंकि गुरु रामदास पातशाह जी दी जो साडी इतिहास जो दसदा है ना, गुरु रामदास पातशाह जी दा जिहड़ा जीवन दा समा सी, पूंजी सी, स्वास सन, वह पूरे हो चुके सन। ते गुरु अमरदास पातशाह जी ने उस वेले गुरता दे नाल अपनी अपने रहिंदे कुछ साल जिहड़े सन ना, वह गुरु रामदास पातशाह जी नूं दे दित्ते सी। ते पृथ्वी चंद गिणतियां मिणतियां करदे सी वी उन्नी साल ते पूरे हो चले, हुण इन्हां ने ज्योति जोत समा जाणा, ते जे मैं लाहौर चलिया गया ते पिछों गुरता गद्दी किसे होर नूं ना मिल जाए।
सत्संग जी बंदा भावे जिन्नी मर्जी गुरु घर दे विच चलाकी करे पर इत्थे गुरु घर दे विच जे मालक है तां ओह गुरु है ओह परमेश्वर है। जिस वेले गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी मत्था टेक के लाहौर गए लाहौर दे विच रह के आप जी ने दोवें टाइम धर्मशाला विच जाना संगत विच बैठना संगत नूं सिक्खी दा प्रचार करके गुरु का उपदेश दृढ़ करवाउणा इस तरह समा आपने चाली चलदा गया। गुरु रामदास पातशाह जी ने कदे उन्हां नूं बुलाया नहीं पर अंदर जिहड़ी खिच सी ना दर्शना दी गुरु के दरबार दी गुरु दी ओ सत्संग जी दिन ब दिन वधदी गई ते ओ प्रेम दी डोर ओ खिच जिहड़ी सी वधदी गई। इधर गुरु रामदास पातशाह जी ने अपने कार्य सेवा दे आरंभ किते इधर गुरु रामदास साहिब पातशाह जी सिक्खी का प्रचार करते ने उधर गुरु अर्जन देव पातशाह जी अंदरों तड़फते ने कदों गुरु पिता जी मैनू बुलाउण ते दर्शन बख्शण। एक दिन चिट्ठी लिखी ते चिट्ठी दे शब्द सन मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चा त्रिकी न्याई त्रिखा ना उतरै शांत ना आवै बिन दर्शन संत प्यारे जियो। ओ चिट्ठी सिख दे हथी भेजी लाहौर तो श्री अमृतसर साहब ओ सिख आया ओ मिल गया अचानक बाबा पृथ्वी चंद जी नूं जदों परची खोली पृथ्वी चंद ने देखिया अच्छा इह तां बाणी भी रच रहे ने ये तो अज बाणी भी रच रहे ने किते इहनूं गुरताना दे देण पिता जी खुश हो के उस वेले सिख नूं कहा कि मैं पिता जी नूं परची दे दवांगा कहिंदे जी जवाब कहिंदे जवाब भी दे दित्ता जाएगा तू चलिया जा जवाब भेजांगे। ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਦ ਭਗਵੰਤਾ ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੀ ਵਿਹਾਵੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪਰਚੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਤੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਉਹ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਾ ਕਰਮ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਾ ਕਰਮ ਇਹ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਰੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਿੰਨ ਕਿ ਤੀਜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਬੰਦ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਟੁਕੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਸੀਹਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਓ। ਬਾਜ ਉਗੜਨਾ ਸੀ ਨਾ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੌਣ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਮੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ

सतगुरु नवारिया की मिलेख सम संभालिया जिनकर उपदेश ज्ञान दिया इन इंद्र जगत में हलिया कसम छोड़ जल के डूबे से उन जारिया सतगुरु बहता लेकिन विचारिया।